0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: திருச்சிற்றம்பலம் தலம் திருமழவாடி.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

ईश्वराय नमः वस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवीतं सहजं ब्रह्मणा निर्मितं पुरा आयुष्यं भववर्चस्यम् उपवीतं गृहानभोः उमामहेश्वराय नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि श्रीकण्ठं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ मद्दद्धं प्रतिगृह्यताम् उमामहेश्वराय नमः गन्धं समर्पयामि अक्षतान् चन्द्रवर्णापान् सालेयान् सदिलान् शुभान् अलङ्कारार्थमानीतान् धारयस्व महाप्रभो उमामहेश्वराय नमः अक्षतान् समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालाद्यादीनि वै प्रभो मया हृदानि पुष्पाणि पूजार्थं तव शङ्कर उमामहेश्वराय नमः पुष्पमालां समर्पयामि अङ्गपूजा शिवाय नमः पादौ पूजयामि सर्वाय नमः कुल्पौ पूजयामि रुद्राय नमः जानुनी पूजयामि ईशानाय नमः जंगे पूजयामि परमात्मने नमः ऊरू पूजयामि हराय नमः जगणं पूजयामि ईश्वराय नमः गुह्यं पूजयामि स्वर्णरेतसे नमः कटिं पूजयामि महेश्वराय नमः नाभिं पूजयामि परमेश्वराय नमः उतरं पूजयामि स्फटिकाभरणाय नमः वक्षस्थलं पूजयामि त्रिपुरहन्त्रे नमः बाहून् पूजयामि सर्वास्त्रधारिणे नमः हस्तान् पूजयामि नीलकण्ठाय नमः कण्ठं पूजयामि वाचस्पतये नमः मुखं पूजयामि त्र्यम्बकाय नमः नेत्राणि पूजयामि फालचन्द्राय नमः ललाटं पूजयामि गङ्गाधराय नमः जटामण्डलं पूजयामि सदाशिवाय नमः शिरः पूजयामि सर्वेश्वराय नमः सर्वाण्यङ्गानि पूजयामि शिव अष्टोत्तरशतनामावलिः ॐ शिवाय नमः ॐ महेश्वराय नमः ॐ शम्भवे नमः ॐ पिनाकिने नमः ॐ शशिशेखराय नमः ॐ वामदेवाय नमः ॐ विरूपाक्षाय नमः ॐ कपर्दिने नमः ॐ नीललोहिताय नमः ॐ शङ्कराय नमः ॐ शूलपानये नमः ॐ खट्वाङ्गिने नमः ॐ विष्णुवल्लभाय नमः ॐ सिपिविष्टाय नमः ॐ अम्बिकानाथाय नमः ॐ श्रीकण्ठाय नमः ॐ भक्तवत्सलाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ शर्वाय नमः ॐ त्रिलोकेशाय नमः ॐ शितिकण्ठाय नमः ॐ शिवाप्रियाय नमः ॐ उग्राय नमः ॐ कपर्दिने नमः ॐ कामारये नमः ॐ अन्धकासुरसूदनाय नमः ॐ गङ्गाधराय नमः ॐ ललाटाक्षाय नमः ॐ कालकालाय नमः ॐ कृपानिधये नमः ॐ भीमाय नमः ॐ परशुहस्ताय नमः ॐ मृगपाणये नमः ॐ जटाधराय नमः ॐ कैलासवासिने नमः ॐ कवचिने नमः ॐ कठोराय नमः ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः ॐ वृषाङ्काय नमः ॐ वृषभारूढाय नमः ॐ भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः ॐ सामप्रियाय नमः ॐ स्वरमयाय नमः ॐ त्रयीमूर्तये नमः ॐ अनीश्वराय नमः ॐ सर्वज्ञाय नमः ॐ परमात्मने नमः ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः ॐ हविषे नमः ॐ यज्ञमयाय नमः ॐ सोमाय नमः ॐ पञ्चवक्त्राय नमः ॐ सदाशिवाय नमः ॐ विश्वेश्वराय नमः ॐ वीरभद्राय नमः ॐ गणनाथाय नमः ॐ प्रजापतये नमः ॐ हिरण्यरेतसे नमः ॐ दुर्दर्शाय नमः
ஓம் கிரீஷாய நமஹ, ஓம் கிரிஷாய நமஹ, ஓம் அனகாய நமஹ, ஓம் புஜங்கபூஷணாய நமஹ, ஓம் பர்காய நமஹ, ஓம் கிரிதன்வனே நமஹ, ஓம் கிரிப்ரியாய நமஹ, ஓம் கிருத்திவாசசே நமஹ, ஓம் புராராதயே நமஹ, ஓம் பகவதே நமஹ, ஓம் பிரமதாதிபாய நமஹ, ஓம் மிருத்யுஞ்சயாய நமஹ, ஓம் சூக்ஷ்மதனவே நமஹ, ஓம் ஜகத்வியாபினே நமஹ, ஓம் ஜகத்குரவே நமஹ, ஓம் வியோமகேஷாய நமஹ, ஓம் மகாசேன ஜனகாய நமஹ, ஓம் சாரு விக்ரமாய நமஹ, ஓம் ருத்ராய நமஹ, ஓம் பூதபதயே நமஹ, ஓம் ஸ்தானவே நமஹ, ஓம் அஹிர்புத்ஞாய நமஹ, ஓம் திகம்பராய நமஹ, ஓம் அஷ்டமூர்த்தயே நமஹ, ஓம் அநேகாத்மனே நமஹ, ஓம் சாத்விகாய நமஹ, ஓம் சுத்த விக்ரஹாய நமஹ, ஓம் சாஸ்வதாய நமஹ, ஓம் கண்டபரஷவே நமஹ, ஓம் அஜாய நமஹ, ஓம் பாஷ விமோசகாய நமஹ, ஓம் ரடாய நமஹ, ஓம் பசுபதயே நமஹ, ஓம் தேவாய நமஹ, ஓம் மகாதேவாய நமஹ, ஓம் அவ்யயாய நமஹ, ஓம் ஹரயே நமஹ, ஓம் பகநேத்ரபிதே நமஹ, ஓம் அவ்யக்தாய நமஹ, ஓம் தக்ஷாத்வரஹராய நமஹ, ஓம் ஹராய நமஹ, ஓம் பூஷதந்தபிதே நமஹ, ஓம் அவ்யக்ராய நமஹ, ஓம் சஹஸ்ராக்ஷாய நமஹ, ஓம் சஹஸ்ரபதே நமஹ, ஓம் அபவர்க்கப்ரதாய நமஹ, ஓம் அனந்தாய நமஹ, ஓம் தாரகாய நமஹ, ஓம் பரமேஸ்வராய நமஹ, சாம்ப பரமேஸ்வராய நமஹ. நானாவித பரிமள பத்ர புஷ்பாணி சமர்ப்பயாமி. உத்தராங்க பூஜை. வனஸ்பதிரசோத்பூத கந்தாட்யஸ்ச மனோஹரஹ ஆக்ரேயஸ் சர்வ தேவானாம் தூபோயம் ப்ரதிக்ருஹ்யதாம். உமாமஹேஸ்வராய நமஹ. தூபமாக்ராபயாமி. சாஜ்யம் த்ரிவர்த்தி சம்யுக்தம் வஹ்னினாயோஜிதம் மயா தீபம் க்ருஹான தேவேஷ த்ரைலோக்யதிமிராபஹம். உமாமஹேஸ்வராய நமஹ. தீபம் தர்ஷயாமி. நைவே

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।